0: 패턴 크라이시니까 꿀마 야 해제 거.
1: 아우 아우.
2: จึงจะได้รองนกชามงคลายหรือไม่นะอาบอกกระรักชามงตักกระรักชามงคิดจะมีเช่นจึงนกนุคงก็ต่อสังสามงเอ้ยอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอ
1: गोबां मास्टि दङ अबहाय जिरायबोसा ब्रैबोसा रक्न जेलाबोसा रक्न उमर सकस' गेस सिगांन' बन बिनि फानसें कास' गेसिनि न' बन लामाव अंखरवै बिनि बखाक्तेके आजिरिवै नक नु खुंचालक माने अबहाय गोबांमा बिहार अग दङ चीन स्टेट फानो गुबुननि हास्टे रगखाय गोबांमा अबहाय दङ ओंखाय जों हाब्रंनि बागै चीनि आं एफेक्ट ओंखाय दङ हायदाबाद जों जेराय चिकन चिकन याकाबा चीनि हाजो रग थांगा ओंखाय जों नगजागो एडुकेशननि गोरै सेबसाब गोरैनि बागै परिनानि गोरै एबा नखुं चुगियानि बागै चेरायबो सारकन' दाबुकनि अजरा रग मैया रग लेचु रग थाइसु रग लामा किनार किनार फालमानि नगो अबहायखे जों सातुं सातुं जराव एबा परिनानि जराव जों ब्रकन दं न गाहाम सेबद्रबाय मांखाखाय एज ए गभर्नमेन्ट गोबांमा अबहाय फ्रिव दङ रों सोरोंजांनाय आबरगो जों परिरि मानो जों नुखुं चुगियांगाखाय बुमा बुफा तुमुं न गोरैखा गोरैखायसो कक आब' बेनि नुखुङाव केबो गोरै फैदेंगे हेल' ए फुंगाहाम फुंगाहाम खायरक मानि तंनानि नांगो हायदोबा
2: नंगो तारि आबोतो इकै केबोतो मागना परिगि मानि हायदोनो सामुं करा नि बिसिनो बन नांखा बन सामुं करा खारि आइ बन एकिता सामुं नरम रंग मोर तुगि फन खलाइ बिखन तो बन रहन नां बे तहे सानै नांखा तं तो बकु नबो गभर्नमेन्ट नि थाने नांखा या पन मु
1: बन
2: सयो बन काम खाइ मान माया जे हेपन सं সামুং করা নিল গুলো যেটা সামুং চিকন চিকন নুখুবি এরা রকম সন্দেশ কেপন খেলায় না ছিল
1: মানে
2: সামুং রঙের যে সামু ওয়াপি রঙের যে সামু অবহায় উন্নবসন কিসের দেরি নেই মানুষ

आकाशवाणी आगरतला जतन फुंकजांग जरानी बेला बेला खाका हम याफारी चेंगो तिनी फुंगी हायुंगी खरंग पांदा अपांदा आवायंगी तंगो शाशाई नेरा दोग चिचुकु किलो हर्चो नेरा थामची दोग फुटा बुरे मीटारो शाराशा फुटा दोग बेगा हर्चो बाक्सा खाई आवायंगी तंगो तिनी शाल मारिंका तिनी फाशाल चिब्रेरा थामची बा त्रिपुरा बिशी तलक्रां तालने शाल नचिन नई हाँ खरंग खाना तंगनाई दाखू बुकुक संगनो दई मारे किचिंग संगनो फायदे हाइके सें पुलियाओ नो चीनी तीन पान्डा चें कक हम खाना लाइ मान बिशं तु चें लाइन खाना लाइन भगवत गीताओ सजाक मानी कक्रक

0: दीक्षा श्रीमद भगवद गीता छुनो कहाम करंग जाय जाय खे थांगै तंगनानै लामा फुनुखौ सुंगसिनि लांगमा धर्म सामंतै कथार हामजांमानि लामा फुनुखौ मताय श्री कृष्ण साव मनाको कायसा चाति पहर अंगचिंग माहाय न सत्यब बिनि नायथाक माबाय न जों सायफायो हायनि बागै बरग रगब सत्य एबा सयनि लामा हिमना नांगौ मताय श्री कृष्ण खाबायजा अर्जुन पाप पुण्य बिनि खलायथे खलायथे आनि कक प्रथमा रग नसाखा साखा नों जे सामानि जत्न सैन जबा खालायखे गायनि बोखाग न थैनाय अर मंसाबो जायाग्रै फियाबा अ थैमा तामन हन बर पैला गोलै ओङै आचाय आबनि उल तरुय चेराय चासलक सिखला उर बुरा अंग अबहाय न थैमा बरक रगनि ते कायसा बेराम सगैमानि चिनिसाक कायसा बरमनि ते कायसा बरम सोलायजाग मानि असलाय मंग साग सोलायजाग फान चिनि फला सोलायजाग गया चिनि फला चामिया थैया हायनि बागै सिनाय बर र खाहामिया ओंया बरक बिनि कसाम रिखि बिवै कताल रि जमा हायन चिनि फलाबो कचाम हामिया साग न सोलायनो हारो सोलायनो गोदाल साग न नाहार बिरो चिनि फला मकल बायनो गया योग ज्ञान एबा ब्रह्म ज्ञान बाय फलानो नगैमानो सामं न धर्म हायनि बागै जत्न सामं खालायना नांनाय मताय श्री कृष्ण हायनि बागै जबा खालायमानि बिसुंतै अर्जुन बिनि सामं खालायनानि कग्न साखा अक कहाम नक्सों गीता श्री कृष्ण अर्जुन सामानि कक रग्नसों खाना लायखा फायदे है किताबो तीनती है सालो लाइबुमा तम तम रग पातिखा तई तीन साल नसंग तमने बागे मैत्र रग खालय दौ अब नगे किच्छा कक खाना लायन
1: फायदे सैमालय तीन हाय साल तम तम पाति लंका तई तीन तम सालय तीन फैला न वर्ल्ड एगेन्स्ट चाइल्ड लेबर डे हनी बिशि ब्रुम ब्रुम न ट्वेल्व जोन पालय जागो तकलै ओ बिशिनी एबा तबुक अजरा रग चराय रग्न उमर सक्सा गियाव सामुं खलायरिमानि आबन खरां दिसानानि बागै ताक्लायनि बिसिनि थिम नारगजाखा रेड कार्ड टु चाइल्ड लेबार चराय रग उमर सक्सा गियाव सामुं खलायखाखाय ब्रक कायसा रेड कार्ड टु चाइल्ड लेबार बाय खरां दिसायमान्नाय ते ब्रक आबो बाय गभमेन्टनि बोखाखदैब केबो ब्रंनो सेबसाब एबा लाम काहाम फुनु काकाय गभमेन्टनि बोखाखदै ब्रक सेबसाब मानाय तै दङ 1975 बिसिब प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गान्धीन एबा जगमोहन लाल सिन्हा इन्दिरा गान्धीन चंमारिनि चाया खालायमानि बागै एलाहाबादनि हाइकोर्ट बाय माजरा बेरखा आबो हास्टिव कतर पलिटिकल स्लाइजाक मानि साल हनिब तिनि पालाय जागो 1996 बिसिव देव गोदा भारतनि फिल चिनै मन्त्री बक्रक हेनै चंजाक मानि साल बिसि चिजुगुरा बाजिनय जम्मु काश्मीर विधानसभानि बागै राजतन्त्र एबा हायुं खानानि बागै कक चाबजाखा बिसिचि जुगुरा थामसिनै चत्रग्राम चबा नांमाबाय नांमानि बागै पटियान पुलिस रकनि सिलाय पाथाम ककमानि बागै हानि बागै चबा ख्लायनाय अपूर्वा सेन थैमानि बतिनि हाय सालन थैयो होनै जों नखा आमसुग जरातै जों खोनालायका तिनिनि लाइथांजाक जरारग तामो तामो पाटिलांखा

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Artemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to ₹35,000. Offer till stock last. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
5: Dolby Atmos 5.1 surround sound.
6: Cortical.
5: Advanced level 2 ADAS.
6: Go.

0: वाह जादू हुमाले किसी से निया हनी सका नखनी तोला आवश्यमान वो जादू आतुक समान वो जादू वनोले साना निको गया वाह सिनी जे रसामुं हापा नि कॉकबर रसामुं हापा नि रसाब कुरन छादा को नि रसामुं नंग रसाब इंगे ओ जे सरंगमुं नंग बाहे के सरंगा
1: मा अं कुनो तिसार तो करे पिया अं मो साक साक साइ तोखा आगे चोंग प्रेंग पाइजे असने अं वायलिन कैसा पाखिया ओ वायलिन अं सालबुन ब्रुम नो गोसिनी जादु कलिजा निने उत्तर आगे दक्षिण आगे नि गम हाय रसाम र कक्थे खले तामन चाइ तो गोता साक साक गम हाय केनो सरक तरक या सिर गासुखा ने ताम माने नि ओम हाय दावस जर ताम तंग गोता
0: निने सरंगपुर निने उमर बसकिन खाना नस
1: आं सरंगपुर
0: बो क्लास रगोंग ना
1: क्लास एम तो आं सुमिरक सरंगमा रखाय क्लास टू निशिम सेंगे फैग सर
0: क्लास टू निशिम समय
1: तमानी सर ए दादो नकलो आनी दाई बड़ो तमारो खाना सारीख सारीगो गो आंब खा बजाता आंब मचंगो सर बनी समय रख सान बड़ो आनो कई कंखा सनाम रखा समय अब आं सालबन ब्रम दाम ओम हाइके सिरंमां सिरंमां सिरंमां तावसुजरा सिरंगगा
0: आ समय सिरंफोरो नेने जे कय बसरो थांगै ने बुसुक जरा नाका जे
1: सारि मानानि ओम साना थांगै आं आजम आजम से रंगमा हाइदो माने बिसि आसुक समय जरा नांसुगेता तव सालनि साल ताम ताम खैनो यासि आजमा हाइम फायो अब मुसुमा बगे दे अंग साइमिया पिया सुख जरा नांगेता अन बगे
0: मुताय रंगनि कैसा
1: वाय
0: आशीर्वाद
1: गय तब ओ माय के गोय तिसार बो मांखा दिने परम ग्राम सुमय कर कृपा सिंधु जमातिया बिन थानी बो आं ते बो रंगनानि हनै थांगा ओ माय के तो थांगै रबो सिरंगै दङ ता बिन थानी
0: बिन थानी ता ते बो नों सिरंगै दङ ता बुं नों बरम गोनां ताम करों समय ताम करों बन थानी नों ताबो समय सिरंगै दङ निनि उमरले बसे
1: आनि उमर ताबो 19 प्लस 19 बोसोर काइ दङ
0: 19 बोसोर नों अजराव ते नों सिरंगमानि बिसि बिसि बसे काका बिन थानी सिरंग
1: बिन थानी सिरंगमानि आं बिसा हाय काइ दङ
0: बिसा हाय काय दंखा ना गै तामुंनि बिसिङैनो नों बो तामुंनो खाना थगजाखौ बा तामना मसुंखौ
1: आनि मसुंमाखै सुमैनो बिसि मसुंजाखौ ता
0: सुमैनो नों जरायनसिमि सोरांनो फायमाबा ओंखै निन खुक्ति सुमै खरां खिसा खाना लायानो
1: हा खाना मानाय
0: बो रसामुंनो खाना नाय
1: रसामुं
0: सिनि सिरि सिटिनि ओ जे जादुनि आबो बायदा चेंनाय ना बबो
1: आबाय चेंगाना आं उत्तर आगिनि तामान
0: दा

0: अब के उत्तरागिनी उत्तरागिनी फुरुङ कहाँ असुमुनी अब खरान
1: अब खरान
0: कहाँ अब एकदम तामसा सानाय बोखानो कसम सारे
1: हुग्रग
0: हुग्रग निनी अम खनाय ने कुबिनो हुगो हाय से मा दंसि
1: हामदा
0: ते तम खना दाय सगे माने खना फ्राय खना माने खनाना मुसुमान पाइसु गिया हाय निना बो किसा किसा कमां के खनार दुगि ताम खनार नाय
1: गबां खे आं जेने माइक तालसा फ्रो मसामानि मामिता मसामों अमनि जमनना किसा ताम खनार बानो

आइके जों दे स्राप जानि यागुलो नरक खनाय मानबायनाय सिनि तिनिनि आलायदा पान्दा जों सायमानो तिनि हायुं जेनाय रक न सामुं खलाय रमानो गासुमानि साल आबुनो रुगिनो तिनिनि आलायदा गायसा पान्दा नरक खनाय मानबायनाय आबुनि बागै नरक पान्दा छयावैनो तिनि पान्दानो खनाय दंदि 101.6 मेगाहर्ट्स एफएम उज्जैनतनो ट्यून खलाय दंदि ओंखाय जों तिनिनि अ सालनो रुगै आलायदा गायसा पान्दा दाबुबनो जों जागै थांनाय ओंखाय नरक खनाय दंदि लगि दंदि तिनि ओंखा हायुं जेराय रकनो सामुं खलाय रमानो गासुमानि साल अ साल तांगि पालायजाक जेराय रक बो उमरनि बिसिं बो उमर जरा जेराय होनै खबजा खाबरक बेबाक नरक पान्दानि बिसिं थै खोनाय माननाय आलायदा गायसा पान्दा ओंखे खोनाय दंदि लगि दंदि दाबुक चिनि स्टुडिनि जरा खगतामै दङ दिबरनि दाम चिनि ओंजा ओंखे जरा

जों बेरायगिरि बान्दाव रोजाबं खोनालाय दङ खोनाथ' रोजाबं सारासा पइन्ट अफ मेगा हार्स एफएम उजेन्ट' बेरायगिरि बान्दाव जों बेरायमानि गग्रबनोबो जों सालायनाय आव जों जों बेरायनानैथ' नांगौ न' फियाबा जों गोबां मा बर' रग जरा नासिंगौ उलु बेरायोनो तेवसा तेकि सारां रखादि बेरायोनो तेसावल' बेरायोनो सिगां न'नि अबख्लायसिगोना सिगां न'नि अमानि बायसिगोना अमाहायर' गोबां मा प्लेनिं एबा वानसुगै जों बेरायनानै खाचंलायो फियाबा जराव बर' रंनि लांमाव अमाहाय जरा फायथाङो जे उल' उल' उल' होनबांन' जेफोरो सै बेरायनायनि बागै खाचंग' दाबुले बेरायसिनाय आफ्रु रग' हे साखा

गेजेरजों खोनालाय दङ बेरायगिरि बान्दाव खोनादो दब्रु चापुं थैजों बेरायनानै जों बोसों जरा दै नां चिनलाङाव आब्रबन दै नो गेसा सावै दंलाय जों फियाबा बेरायनानै हिंगांखाय जों गेसामा वानसुबु बर्मा वानसुं गेजों तमुं नो हाक्सा लगो बेरायनो हांखाय आरो रां पैसा रो किसा मावानसुगो हाय दा जे नक नुकुं रगो जों सालब्रुन न जों चावै दंना नांगौ हाय दाबा फाथिक दामाय चावै दंना नांगौ हंखे चावै दंना हंखे तो जों खालायना नांगौ सामुं रग हाय दा सामुं हुमुं जों खालायनानै नांगौ जों आजिना नांगौ बे जों आजिनानै जाद्रुप आजिखा हंखे जों बरां वाइखे जों बेरायनाय आब' सोंमुं तरगै थाङो जत' बरकनि लांमावनो जे दैमेटिखाय नक नुखुं नायगलै दंनाय रगनि बागै हिंखाय अब' बेलायन' कुटुब जे सेबक रग कतर ख्लाय दंनाय रग दरमाय गोबां मानि दंनाय रग बर'नि बागै हिंखे त' अब' मुं साया माहाय फियाबा जों ग्रिदिबा मुजुं मानि दंफानो याक जुगिया आफुल रग' जों दामो ख्लायनाय जों आफुल रग' हंखाय जों हाक्साल रां पैसा नांगियाव' हाक्सालाव थांना हंखायसो रां पैसाथ' नांगोलैना फिया गानाव' थांनानै हंखायलाय रां पैसा नांगिया जों टंथक मुं ककखाय जों बर' थांखाय जों टंथक बमाहायखे जों टंथक बोसोर टंथका हंखाय जों जिनि सामुंनि पजा हिलिगै दंमोनो हेलेंनि मानो जोंहा बबावमा नायदुंनाय हायादोबा ओंखाय जों गाना रग' फानो गानानि दैसा दै गेलें ओमहाय गोबां मा गाना गिनि गिसिसा थांखायनो मानजागै मानो एबा गामि गाना रग'नो ओमहाय दंथतक दै खेरें रग बेरायजाखनाय दङ ओंखाय आरो रग' फानो जों गिसा मिसा दंथकलाय मानो हायादोबाना मेन ओंखायथ' जों गक ओंखाय जों दंथकनानि जिनि बजानो किसिसा बगनानि जों नग' रग' दंखांखायथ' जों आब' जिनि सामुंनि बजा आब' दै थाखलाया ओंखाय जों अमाबगायसो जों मागसेव गुबैनो जों फाथार हास्ते एबा गोबां मा थाय रग' बेरायना हांखाय रां पैसाथ' जों नांगौ जों खरगसा खरगसानि जे गोबां मा नाङै थांगौ एबा जों दंगै फायजाखनाय थाय रमदि त्रिपुरानि फाथार हास्तेफोरनो ओंखा रमदि गोबां मा बर' रग्न' जों मेघालय शिलं रग' थांमानि नुग' ओंखाय आरो रग'थ' नायथतक थाय रग' गोबां मानो दङ हायादा ओंखाय फियाबा जों आरो रग' थांनानै हिंगा हांखाय जों रां पैसाबो बेलाय गोबां नांगौ हायादोबा जोंनि हास्तेनि थांना हांखाय अबाहाय जों फादार हास्तेनि गोबां मा बर' रग्न'बो जों जोंनि अरफायै बेरायफायमानि नुग' जोंनि हास्तेनि जे नायथतक नुयुं मा फानोंखा निर्महल फानोंखा बिलाग रग फानोंखा गोबां मा बर' रग्न' फायै बेरायफायमानि नुग' फादार हास्ते रगनि ओंखाय जों जोंनि अर'नि जिमिबो गोबां मा बर' रग जे बर' रगनि साग जुगजाग रां पैसा गोबां आजुयै दङ तालाव गोबां गोबां रां आजुयै दं बर' रग्न' हंखाय जों बेरायमानिबो जों नु

0: Sene diyor toko. Yani dava usko toko hi toko.
1: I will not give you that moko. अभी तो कुछ दिनों में मेहंदी संगीत एंड रोको.

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: শ্রোতা বন্ধু, এতক্ষণ শুনছিলেন শ্রীমান অতুলোত্তমা, আমি আপনাদের বন্ধু আজ অর্ণব ছিলাম এতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সাথে। এবারে শুনবেন দিল্লি কিন্তু থেকে প্রচারিত সমাচার সন্ধ্যা।
1: संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने

0: सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा

0: भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 235,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडिव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एक्सप्रेस टीम के दिल्ली लोन है बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता दिल्ली लोन के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.delhi-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है।

0: लिए देश की सुरक्षा का सहारा है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर

0: भी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने की सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ।